जो सतगुर सरण संगत नी आए, त्रिग जी पै त्रिग जी वास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिख्या लिखास। धन धन सतसंगत जित हर रस पाया, मिलजन नानक ना प्रकाश राग। गुजरी महला पंजवां, काहे रे मन चित पै उद्दम, जा आहर हर जीव परिया। सैर पत्थर मैं जंत उपाय, तां का रिज कागे कर तरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सूके काष्ट हरिया रहा, जनन पिता लोक सत बनता, कोई न किसकी धरिया। सिर सिर रिजक संबाहे ठाकर, काहे मन पो करिया। उडे उडे आवै सह कोसा, तिस पासे बचरे शरिया। तिन कवन खला पै कवन चखा पै, मन में सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट स्थान, ठाकुर कर तर तरिया। जन नानक बल पल सद बर जाइए, तेरा अंत ना पारा बरिया। राग यासा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अकम अकम पारा। सब त्यापे सब त्यावे तुर जी, हर सच्चे सृजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्यावो संतो जी, सब दुख विसारण हारा। हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सरपंदरंतर जी, हरि को पुरख समाना। एक दाते एक भिखारी जी, सब तेरे चोज बडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हो तुर पे निव न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या कुणी आख बखाना। जो सेव है जो सेव है तुर जी, जन नानक तिन कुरपाणा। हर त्यावे तुर जी, से जन जुग में सुख वासी। से मुक्ता से मुक्त पै जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फांसी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी, तिन का भउ सब गवासी। जिन से पिया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बर जासी। तेरी भगत तेरी पात भंडार जी, परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत तेरे पास सलाहन तुर जी, हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करे हर पूजा जी, तप तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पड़े बो सिमर शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत से पात भले जन नानक जी, जो भावे मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुद जीव डियवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू नेह चल करता सोई। तुद आपे भावे सोई वरतै जी, तू आपे करे सोई। तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानोई। अस महला चौथा, तू करता सच्यार मैंडा साई। जो तो पावे सोई थिसे, जो तू देह सोई हो पाई रहा। सब तेरी तू सब नी ध्याया, जिसनु कृपा करहे तिन्ना अमृतन पाया। गुरमुख लादा
मन मुखवाया तुद आप विछोड़या आप मिलाया तू दरी आओ सब तुझ ही माहे तरपन दूजा कोई नाए जी अजंत सब तेरा खेल भी जोक मिल विछड़िया संजो के मेल जिसनु तू जना है सोई जन जाने हर कुण सद ही आख बखाने जिन हर से पिया तिन जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए तू कार कर वेखै जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सार वरड़े पहले निवासा पानी पाव उतने किया पंकज मोह पग नहीं चल हम देखा तह डूबियले मन एक न चेत समूड मना हर बिसर तेरे गुण गर रहा ना हो जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पिया प्रणवत नानक तिनके सरणा जंतु नाही विसरिया आसा महला पंजमा पही प्राप्त मानुख ते हुरिया गोपिंद मिलन किए तेरी बरिया अवर काज तेरे किते नकाम मिल साध संगत भज केवल नाम सरन जामला भजर तन कै जन्म बिरथा जात रंग माया के रहा जप तप संजम तर्म न कमाया सेवा साध न जानिया हर राया कहो नानक हम नीच करमा शरण परे के राखो शर्मा जप तप संजम तर्म न कमाया

पाश है दसमी कब उपार बेनती चापई हमरी करो हादर रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो पुसपारा हमरे दुष्ट सब तुम काबू आप हाते मोहे बचा सुखी बस मोर परवारा सेवक सिख सब करतारा मोरचा निज कर द करिए सब बैरण को आसंगरिए पूर्ण होए हमारी आसा तोर पन की रह प्यासा तुम है शाड कोई अब न त्याहूं जो पर चाहू सतम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारिए चुन चुन शत्रु हमारे मारिए आप हाथ दे मुझे उबरिए मरण काल का त्रासन वरिए हुजो सदा हमारे पचा श्री अस तज जू करिहो रचा राख लिहो मोहे राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कार विशन प्रकाशा सगल काल का किया तमासा जवन कार जो गेशव कियो वेद राय ब्रह्मा जो थियो जवन कार सब लोग सुबारा नमस्कार है ताय हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जश्न उपजायो आदि अंत के अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकर प्रजा जने आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पल मोबद कियो घट घट के अंतर के जानत भले बुरे के पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्तूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखे सुख पाए साधन के सुखे एक एक ही पीर पछानै घट घट के पट पट के जानै जबत कर करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब अकारख करत हो कब हूँ तुम मैं मृत देह तर सब हूँ

महादेव को कहत सदाशिव निरंकार का चिंतन पव। आप अपनी बुद्ध हजेते वर्णत भिन भिन तू है तेते। तुमरा लखन जाय पसारा कह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूस रूपा रंग प्यो राव के फूपा। अंड जेर से तरकीनी उत्पर खान बहर रच दीनी। कहूँ फूर राजा वह बैठा कहूँ सिमट प्यो शंकर इकठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुकार श्रु सेम पव। अवरछा मेरी तुम करो सिख उपार सिख संगर। दुष्ट जिते उठ वत पाता सकल मलेश करो रणकाता। जे अस्तुज तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तो है मरे। पुरख जवन परे तिहारे तिनके तुम संकट सवटारे। जो काल को एक बार त्याए हैं ताके काल। निकट नह अहर छा हुए ताय सवकाला। दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाय निहर हो ताके ताप तनक मोहर हो। रेद सिद कर्मो सब होई दुष्ट शास सके न कोई। एक बार जंत में संभारा उकाल फांते ताहि उपारा। जिनर नाम तिहारू कहा दार्द दुष्ट दुख तेरा।

जाए। सवैया पाई गहे जब ते तुमरे, तब ते को आखतरे नी आन्यो, राम रही पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न मान्यो, सिमरत शास्त्र बेस पै, वो भेद कहे हम एक न जान्यो, श्री सपान कृपा तुमरी, कर मैं ना कहो सा तोहे बखाने दोहरा।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद प्यावरी माय सतगुरु में पाया सतगुर तै पास ऐसे ती मन वधिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द कावणे आईया शब्द उतां गावो हरि कीरा मन चनी बसाया कहे नानक नंद हुआ सतगुरु में पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर ना रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा

न जाने मेरा। बोलना जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अरदास ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार। श्री भगौती जी की पातशाह दसवीं प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिरंगत कुरते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर आय। श्री हर कृष्ण त्याई है जस रठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरय कर नौन ते आवे ताय। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी। सब थाई हुए सहाय दसा पातशाह ने जोत। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ उपदेश जी का ध्यान तर खालसा जी साहेब बुरना जी। गुरु जी के पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चढ़ाई देख पाही देख के अंडट कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारां दी पवित्र कमाई का ध्यान तर खालसा जी साहेब बुरना जी। जिन्हां सिंघां सुणिया धर्म हे सिर ते बंद बंद कुटवाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े। आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दे सतार हित कुरबानियां कीतियां धर्म निहारिया। सिखी सिदक केसां सवासां संगन पाई आप जी दे भाणे नूं मिठा मिठा करके मन्निया। तिन्हां महान सिंघ सिंघणियां पचंगियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान तर खालसा जी साहिब बुरना जी। पंजां तख्तां समूह गुरद्वारियां दे दर्शन दीदार दा ध्यान तर खालसा जी साहिब बुरना जी। प्रथम समूह खालसा जी की अरदास है। समूह खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेते आवे। चेते आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तर शरवाए देखते फतेह। बिरद की पैर पंथ के जे श्री साहब जी सहाय। खालसा जी के बोल पाले खालसा जी साहिब बुरना जी। बख्शिश करो सिखा नु सिखी दान के स्थान रह स्थान विवेक दान विसाहा दान भरोसा दान। दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुख जुग अटल धर्म का जयकार खालसा जी साहिब बुरना जी। आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पद रखक आपकार पुरख वाहिगुरु। गुरद्वारा श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारिया गुरधामां तों जिन्हां तों खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा पंथ नूं बख्शो जी। हे निमाणियां दे माण सतगुरु नितानियां दे तान न्योटियां दी ओट न्यासरां दे आसरा धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। आप जी दे पवित्र चरणां विच अरदास बेनती आप जी दी महान कृपा रहमत होई सच्चे पातशाह जी। आप जी दे हजूर शामां दे दीवान सजाए गए सजे दीवानां विच आप जी दी लाही पाणी दरोर कीर्तन होया सच्चे पातशाह जी। उस तो उपरंत सच्चे पातशाह सोदारा साहब जी दे पाठ हुए हैं। सच्चे पातशाह बाणी पढ़दिया कीर्तन करदिया बेअंत भुलां चुकां हो जांदियां अखर वाधा घाटा भुल चुक मुआफ करनी। अगे तो शुद्ध ते स्पष्ट गुरबाणी पढ़न की बल बुता समत बख्शे करनी। पढ़ी सुनी गावे बाणी का भाव समूह साध संगत दे हिरदियां विच वसाउणा। जो माई भाई आप दे दर ते तरफल भेटा लै के हाजिर होया सब दियां भेटावां हाजरियां शुभ मनोकामना संपूर्ण करनी आ। सब दे काज रास करने सच्चे पातशाह जीओ। समूह साध संगत वालों आप दे हजूर पंचम कड़ा प्रसादी देख सर कर हाजिर है। आप ये दर ते प्रवान होवे प्रवान होया कड़ा प्रसाद सार संगत विच तुट वरते। दया करो पावन हुक्मनामे बख्श के संगतां नूं करतार करो सही प्यारे मिलने। जिन्हां मिलिया आप जी दा नाम चित्या पे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की दोहरा।

कुंदा जांत दूरे जाकि टहल पावे दर के मात सब सारे मुक्त जान सदा सदा पूर्ण हार नानक राखण हार पार तंत्या कूड़ी संग रचै सा छोड़ झूठ समचै जो शरणा स्वस्त्र कर्मा ने जो हुवन सो दूर प्राण छोड़ जाय तिसका श्रम करै संग साहि तिस पर हर चंदन लेपो तारे तोय करता प्रिय प्रसन्न सा होय अंत कूप मैं पतत बिकरा नानक काल डिहो प्रभु दयाल करतूत पशु के मन चा लोक पचारा कर दिन रात बाहर भेख अंतर मन बा शब्द नाय कश कर छपाया बाहर ज्ञान त्यान स्नान अंतर व्यापे दो स्वान अंतर अगन बार तन स्वा गर्भ पात्र कैसे त्रे था जाके अंतर बसे प्रव्याप नानक ते जन सहर संभाल

संग करु खतर, साधक संग नरक पर हरय। साधक संग इहा उहा से ला, साध संग बिशर थर, मेरा जो इच्छा है सोई पर पाए। साधक संग न बिरता जाए, पाए ब्रह्म साध दृद बसाय। नानक उदर है साध सुन रसाय, साधक संग सुनो हर नाम। साध संग हर के गुण गा, साधक संग न मते बिसराय। साध संग सर पर निस्तराय, साधक संग लगे पर मीठा। साधु के संग घड़का डीठा, साध संग पे आज्ञाकारी। साध संगत पे हमारी, साध के संग मिटे सब रोग नान। साध पेटे संजो, साध की महिमा पेतन जान है। जिता सुन तेता बखियान है, साध की उपा ते गुण ते दूर। साध की उपा रही भरपूर, साध के सोभा का नाई अन। साध के सोभा सदा बयान, साध के सोभा उते उचे। साध की शोभा मूर्ति मूर्ति, साध की शोभा साध पनियाई। नानक साध प्रभे न पाए सलोक, मान साचा मुख साचा सोए। अवर ना पेखे सुबिन कोई, नानक के रचन ब्रह्म ज्ञानी।

सुनती वै। कई कोट जाख किन पचा कई कोट भूत प्रे सुकर मिलका सबते निरसम ते दो नानक आपर त्रया भरपूर कई कोट पताल के वासी कई कोट नरक स्वर्गन वासी कई कोट जन्म जीपे मरे कई कोट पोजोनी फिरा कई कोट बैठती खाए कई कोट काले सब पाए कई कोट किए तनवंत कई कोट मैं चिंत जय जय पण तत राखे नानक सब कुछ पाके हाथे कई कोट भय भय राखी राम नाम संगत नवदागे।

प्रभु के गुण गावो, साथ साथ प्रभु तुम्हें ध्यावो, चरण कमल से लागे प्रीत, भगत करो प्रभु की नित नीत, एक आधार, नानक मांगे नाम प्रभु सार, प्रभु की दृष्ट महासुख होए, हरस पावे बिरला कोए, जिन चखिया से जंत्र बताने, पूरन पुरख नहीं डोलाने, सुपर परे प्रेम रस रंग, उपजे चाव साध के संग, परे सरन आन सब त्याग, अंतर प्रगासन दिल निवलाग, बड़पागी जपिया प्रभु सोए, नानक नाम रथे सुख होए, सेवक की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई, जन को प्रभु होयो दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल, बंधन काट मुक्त जन पया, जन्म मरण दुख भ्रम गया, ईश पुनि श्रद्धा सब पूरी, रब रहा सत्संग हजूरी, जिसका साथिन लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए, सो क्यों बिसरे जे काल न पाने, सो क्यों बिसरे जे की आ जाने, सो क्यों बिसरे जिन सब किश दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरे जे अग्न में राखे, गुर प्रसाद को बिरला लाखे, सो क्यों बिसरे जे बिखते काढ़े, जन्म जन्म का टूटा गांड, गुर पूरे तदे बुझाया, प्रभु अपना नानक जन त्याया, साजन संत करो हे काम, आन त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरा नाम जपावो, भगत पाए तरिये संसार, बिन भगती तन हो सीशार, सर्व कल्याण सुख निध नाम, बूट जात पाए विश्राम, सगल दुख का हो नाश, नानक नाम जपो गुणदास, उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ, मन तन अंतर ए सुहाओ, नेत्रो पेख धर सुख होए, मन बिकसे साध चरण धोए, भगत जना के मन तन रंग, बिरला को पावे संग, एक बस दी जे कर मया, गुर प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहा सर्व समाए, प्रभु बख्शांद दीन दयाल, भगत वशल सदा कृपाल, नाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल, आदि पुरुष कारण करतार, भगत जना के प्राण दार, जो जो जपे सो होए पनीत, भगत पाए लावे मनहित, हम निर्गुण आर नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरुष भगवान, सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमक हर के गुण गाए, अनक राज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन का पर संगीत, रसना जपती हर हर नीत, पली सो करनी सो बातन वंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभु देहो निवास, सर्व सुख नानक प्रगास, लोग सारगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप, आपन किया नानका, आपे ही फिर जाप, अष्टपदी, जब आकार कह न दृष्टेता, पापुन तब कहते होता, जब तारी आपन सुन समाध, तब बैर प्रोध के संग कमाद, जब इसका वर्ण चिन्ह न जावत, तब हरक सो को किसे ब्यावत, जब आपन आप आप पार ब्रह्म, तब मोह कहा किस होवत परम, आपन खेल आप वर्ती जा, नानक करने हार न दूजा, जब हो प्रभु केवल तनी, तब बंद मुक्त को किस को गनी, जब एक हर गम अपार, तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभु सहे सुभाए, तब से सकल कहो किस ठाए, जब आपे आप अपनी जोत तरे, तब कवन निडर कवन कस डरे, आपन चल तब करने हार, नानक ठाकर गम अपार, अविनाशी सुख अपने आसन, तय जन्म मरण को कहा विनाशन, जब पूर्ण करता प्रभु सोए, तब जम की तास कहो किस होए, जब अवगत अगोचर प्रभु एका, तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा, जब नानरंजन गोचर आगा दे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, अपने आप ही चर जा, नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा, जय निर्मल पुरख पुरख पद होता,

तै छल छदर लगत कहो कीस जै जो स्वरूपी जो संग समावे तै किसे भू कवन त्रिपतावे करन करावन करने हार नानक करते का नहीं सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए भाव मित्र सुध पाई जय सर्व

आपन ऊजा अपने अपनेरा ते कौन ठाकर कौन कही है चेहरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माल नानक अपनी घर जानो आप जय शाल शहीद अभेद समाया हुआ किसे पे आपस माया आपस को आपे आदेश ते गुण का ना ही प्रवेश जय एक एक एक भगवंता तय कौन अचिंत किस लागे चिंता जय अपन आप पधियारा तय कौन कथे कौन सुनने हारा भव बेअंत ऊच ते ऊचा नानक आपस को आपे पहुंचा जय अवरज ऊपर पंचकार ते गुण में किनो विस्तार पाप पुन तह पही कहावत को नर को स्वर्ग पछावत आल जाल माया जंजाल होमे मोह परम पैपार दुख सुख मान अपमान अर्घ अनक प्रकार की हो ज्ञान आपन खेल आप कर दे के खेल संकोच तो नानक एक है जय अवगत भगत ते आप जय पसरे पसार संत प्रताप दोहू पाक का पे धनी उनकी शोभा उनहु बनी आपे कौध करे अनंत जोज आपे रस भोगन निर्जोग जिस पावे जिस आपन नाय लावे जिस पावे तिस खेल खिला

श्रेया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथे अब सुनने हार आपे ही का विस्तार जात पावे सशिष्ट उपाए अपने पाने लहे समाए तुम ते भिन्न नहीं किश होए अपन सू सब जगत परोए जाको प्रभ जी वहा बजाए सच नाम सोई जन पाए सो समतर सी तत् कपेता नानक सगल सिष्ट का जेता जी जंतर सबता के हार दीन दयाल नाथ को नाथ जिस राखे तिस कोहे न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस तज अवर कहाँ को जाए सब सरी

अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर्जामी रहो वे आप, प्रतपाले जी अनुभव पाद, जो जो रजो तिसे त्याद, जिस पावे से लय मिलाए, भगत करे हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मान्या, करन हार नानक एक जान्या, जन लागा हर एक नाए, जिसकी आस न बिरथी जाए, सेवक को सेवा बन आई, हुकम बूझ परम पद पाई, इस ते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार, बंधन तोर पे निर्वैर, अंधन

इसका बसराम। सुन समाद अनहत नाद कह न जाय चस्पन पाद, तें देखा जे साव दिखाए नान तेजन सो जी पाए। सो अंतर सो बार अनंत घट घट ब्याव रहा भगवंत, तरन माए आकाश प्याल सर्वलोह पूर्ण प्रतपाल। बंतन पर्वत है बंतन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पौन पानी बसंतर माए चार कुण देश माए, तिस तै पै नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद प्राण सिमरत में देख ससियर सूर नत्र मेख, बाणी प्रभ की सब को बोले आपे अडोल न कबहूं डोले। सर्व करा कर खेले खेल मोल न पाइये गुणे अमोल, सर्व जोत में जाकी जोत तारे हो स्वामी होत पोत। गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन में बिसास, सिन्हा का पेखन सा ब्रह्म सिन्हा के हृदय सब धर्म। संत जना सुने सो भजन सर्वव्यापी राम सरन, जिन जाता तिसकी रहत सतबन साधु सब कैत। जो जो होए सोई सो माने करन कराउन हार प्रभ जाने, अंतर बसे बाहर भी ओई नानक दर्शन दे सब मोई। आप सत किया सब सत ते प्रा ते सुली उत्पात, ते पावे ता करे विस्तार ते पावे ता एकंकार। अनगरा लखी न जाए जिस पावे ते लय मलाए, कम नीट गुण कहिए दूर आपे आप भरपूर। अंतर गज साप जनाए ना ते जन आप जाए, सरभूत आवरतारा सब नैन आपे खनहारा। सगल समगरी जा का ताना आपन जा सा पे सोना, अमन जाने खेल बनाया गया कारी की नी माया। सब कह मतलब तो रहे जो कहना सो आपे कहे, आ गया वे आ गया जाए नानक जा पावे ता ले समाए। स्त्यो सुना ही बुरा उरे कहो कने किस करा, आप लागर दूता नीकी आपे जाने अपने जी की। आप साज तारी सब साच ओत पोत आपन संगराज, तागी अंत में कहीं न जाए दूसरो एतां सो जी पाए। तिसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नानक के जान, जो जाने ते सदा सुख होए। आप मलाए ले प्रभ सोए ओ तनवंत कलवंत पदवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। तन तन तन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आमन का ए सुभाओ जन के संग चित आवे नाओ। आप मौत मौत करे संसार नानक तिजन को सदा नमस्कार।

नाम गोविंद भगत कै मन बिसराम कोट पराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जाके मस्त कर।

कर्म सावते यूच ताकी सोबा बनी नानके गुण नाम सुखमणी सबते यूच ताकी सोबा बनी नानके गुण नाम सुखमणी सुखमणी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। राम कली महला तीजा। आनंद क्या ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद प्या मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया शब्दो तां गावो हरी केरा मन जनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर ना रहो तो मन मेरे दुख सावे सारना अंगीकार हो करे तेरा कार सब सवारना सबना गला समरा स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरे करदा तेरे सब किसे जे सो पा।

कर्म सेविय सचा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। कंवल नयन मदर बैन कोट सैन संग सोभ कैत मां जी सोच दिसे जही पाद खाहे जियो। देख रूप या तन उप मोह महा मग पई किंकनी शमत चंत कार खेल पाहे जियो। काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेड़ सके ईस थम्बम ज्ञान त्यान तरतीय चाहे जियो। सात सा श्रीनिवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। राम नाम परम ताम सोध बोध नंकार बेशमार सर्व को काहे जियो। सोथर चित भगत हित पे तरयो हरनाक्षरयो नख बदार जियो। संख चक्र गदा पद्म आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखे कौन ताहे जियो। सत साच श्रीनिवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। पीत बसन कुंद दसन प्रे सैद कंठ माल मुड़सी तीर मोह पंख चाहे जियो। बेब जीर बड़े तीर धर्म अंग अलखं खेल किया अपने उशाए जियो। अकथ कथा कथी ना जाए तीन लोग रिया समाए सुते से द्रूप तरयो साह के साम जियो। सत साच श्रीनिवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोबिंद जियो। भले शरण सवन मरण भगत फरण कान को ने कलंक बजी डंक चल तार रविंद जियो। राम रमन दुर्त दमन सगल पवन कुशल करण सरपूत आप ही देवार देव मस्या मोख फनिंद जियो। जर्म कर्म माश काश हु ब्रा जमना के कूल खेल खेलो जिद गिद जियो। नाम सार ये तार तज बेकार मन के अंदर सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोबिंद जियो। श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। गुर गया मान ने निदान सच जान मंत्रे निस्बस होए कल्याण लहे परमगत जियो। काम क्रोध लोह मोह जन जन साड़ तो होमे का फंदकार साध संग रत जियो। दे गए त्रे स्नेह चित बलास जगते चरण कम सदस्यो दृतकार मत जियो। नाम सार ये तार ताज बेकार मन के अंद श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। सेवक है भरपूर जोग जो वाह गुरु तेरा सब सदका निरंकार पैसा सलामत कह न सके को तू का दिका। ब्रह्मा बिन सिर है तैगंत तिन को मोह पिया मन मद का। चौरासी लख जो न पाई रिजक दिया सब हूं कोता दिका। सेवक है भरपूर जोग जोग वाह गुरु तेरा सब सदका। वाह वाह का बड़ा तमाशा आप मैं हसै आप ही चितवै आपे चांद सूर प्रगासा आपे जल आपे थल थम्मण आपे गिया कड़कड़ बासा आपे नर आपे फुन नारी आपे सार आप ही पासा। गुरमा संग सबे बचारो वाह वाह का बड़ा तमाशा किया खेल बड़ मेल तमाशा। वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन प्याल पूरिया अमृते मीठे जाके बचना। माने बरमाद गुरुदाद काल का काल निरंजन जचना। गुर प्रसाद पाइये परमार्थ सात संग से ती मन खचना। किया खेल बड़ मेल तमाशा वाह गुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत अनाद आज कोई न जाने। शिव ब्रंज तर ध्यान दे जिस बेद बखाने।
निरंकार निरंकार

भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद लागे फिरै जंत विस्माद पौण विस्माद पाणी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साथ लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग

सीता राजे राम नृप हुनरंकार सुनाम जाका किया सकल जहान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रहन जिना मन चाव सिक्खी सिक्या गुरु विचार नदरी कर्म लंगाए पार कोलू चरका चक्की चक थल वरोले बहुत आनंद लाटू मधानिया नगाह पंखी पौंदियां लै नसा सुए चहाड़ पुआई जंत नानक हुंदियां गंत नंत बंधन बंद पुआए सो पै कीर्तन चै सब कोई नच नच हसे चले सिर उड़।

जति सदा वे जुक्त न जाने छड़ बै कर बार सबको पूरे आपे होवे सबको पूरा आपे होवे कठना कोई आखे।

पहला पर पुस्तक संध्या बादंग सेल पूछ बगल सुमादंग मुख टूट वे पुखंग सारंग त्रैपाल तिहार बेचारंग।

तुमरी कृपा में कोई न जाने ऊचे ते ऊचा सगल सुमगरी तुम रे तुम ते हो सो तुमरी गत मित नानक दास तुमरी गत मित नानक दास बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु जी एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री बहुत जी सहाय वार श्री बहुत जी की पातशाही दसवीं प्रथम मगौती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबैनो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जठ सबद हो जाए तेग बहादुर सिमरै करनौन दे आवे ताए सब थाई हुई सहाय दसवीं पातशाह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ओ सब थाई हुई सहाय दसों पातशाहियों की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पवित्र पाठ दीदार दा ध्यान तर खालसे सब बोलो जी वाह पंजा प्यारे हैं चौहों साहब जाते हैं चालिया मुक्तियां अठियां जपियां तपियां शहीद सिंघां सिंघणियां जिन्हां नाम जपिया वांड छकिया देख चलाई तेग वाही दे के अड़ कीता तिन्हां गुरमों प्यारियां सच्चारियां दी कमाई दा ध्यान तर खालसे सब बोलो जी वाहिगुरु जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्मे सिद्ध ते

नानक की प्रभिनती अपनी भगती लाए, सो कहो टल गुर सेवी है, अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसिया गुरु का, जन्म मरण दुख जाए, हुआ सिवत कसमी नोरियरसों कुरसों चटिया। तुद डिठ सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया, सजन सचा पातशाह सिर शाम दशा हो। जैस पास बैठिया सोही, सबना दा विसा सतनाम। वाहिगुरु जी। सलोक महला तीजा। सोहबता सुहागणी जा मन ले सच नाओ, सतगुर अपना मनाए लै, रूप चढ़ी ता अगला दूजा नाही था। सोहबता सुहागणी जा मन ले सच नाओ, सतगुर अपना मनाए लै, रूप चढ़ी ता अगला दूजा नाही था। ऐसा शिंगार बनाए तू, मैला कदे न होवई, एनिस लागे पाओ। नानक सुहागण का क्या चिन्ह है, अंदर सच मुख उजला, खसमे माए समाए। महला तीजा, लोका वेहो सूवी सुहावेश करी,

0: वेसी शह ना पाई कर कर वेस रही। आख्या वेसा नाल किते रब थोड़ा मिलता, बड़े वेस कर ले जिन्ने मर्जी कर लो। नानक तिनी शह पाया, हे नानक खसम दी प्राप्ति उन्होंने की, जीवन में सुख उन्होंने आया जिनी गुर की सिख सुनी, जिन्हों ने गुरु की सिख्या सुनिया। जो तिस भावै सो थी इन बेदकंत मिली, जिहड़ी जिद्दां वाहिगुरू नूं पौंदा सी जिहने उदां रहण दी जात सिख ली उहनूं कंत दा मिलाप हो गया। अखीर ते महाराज पौड़ी विच कहिंदे ने, हुक्मी सृष्ट साजियन, हे अकाल पुरख ये सारी सृष्टि तेरे हुक्म विच है, तेरे हुक्म तो बारी कुछ भी नहीं। तुसी कंडा बीज लो ते कंडे फल मिलणगे, वह भी उहदे हुक्म च है। वेखो कंडियां दी खेती बंदे ने की होवे, रुखां दी बीज कंडे दा पाया होवे, ते जो कंडे वजदे ते फिर किहदे ने, हुक्म च ही ने ना, हुक्म तो बाहरी ते है कख नहीं दुनिया में। जे तुसी अमृत बीजे आए ते अमृत भी जिहड़ा मिलना वह किहदे विच मिलना, उहदे हुक्म च ही मिलना। इस करके सारी कार उहदे हुक्म च ही चल रही, उहदे हुक्म तो बाहरी कुछ नहीं। दुख भी उहदे हुक्म च है ते सुख भी उहदे हुक्म च ही है। तो महाराज ने आख्या, हुक्मी सृष्ट साजियन, बहु भेत संसारा। बहु भेत कई तरह का भेत दा अर्थ हुंदा बड़े भांति, रंगी रंगी भांति, बड़े तरीकियां नाले संसार रब ने साजिया होया। तेरा हुक्म ना जापी के तड़ा, ते जे कोई कवे मुकम्मल रूप विच हुक्म नूं बयान किया जावे ते नहीं हो सकदा उहदा हुक्म एडा वड्डा। जिन्नी जिन्नी आप अपनी बुद्ध है जेती, जिन्नी कि साडी बुद्धि हुंदी है, असीं हुक्म नूं उदां ते एक्सप्लेन कर सकदे हां, पर उस तों अगे उहदा हुक्म किड्डा वड्डा है इहदे बारे कोई बयान नहीं कर सकदा। तेरा हुक्म ना जापी के तड़ा, सच्चे अलख अपारा। एक नानो तू मेल लै, एक ओ ने हे वाहिगुरु जिन्हां नूं तू अपने नाल मिलिया होया। महाराज किवें मिलदे हो तुसीं अपने नाल? आख्या गुर शब्द विचारा, गुरु दे शब्द दी विचार द्वारा, गुरु दे उपदेश द्वारा तुसीं अपने नाल मिलदे हो। महाराज अगे कहिंदे ने, सच रते से निर्मले। जिहड़े सच नाल रते गए वह कौन हो गए? निर्मल हो गए, पवित्र हो गए। होमे तज विकारा, उन्होंने जीवन विचों होमे ते विकारा नूं तज दिता, छड़ दिता। निर्मल होने की जुगत ये है जदों बंदा अपनी जिंदगी विचों होमे का त्याग करता, मैं मेरी नूं कढ़दा। अखीरली पंक्ति है, सतगुरु गुरु अमरदास महाराज फरमाउंदे ने, जिस तूं मिलै सो तुद मिलै, सोई सचियारा। हे वाहिगुरु, जिन्हों तू अपने हुक्म द्वारा गुरु दे शब्द दी विचार दी सोझी दे के, जिन्हां ने अपने अंदरों होमे ते विकारा नूं छड़ दिता, वह सचियार जीवन वाले हो गए ते उन्हां दा मिलाप तेरे नाल हो गया। वह रब दे नाल मिल गए, वह पति दे नाल मिल गए, वह पति पत्नियां नाल मिल गए। तो गुरु कृपा करे, धन गुरु अमरदास महाराज का यह बचन जिहड़ा कि सानू वार वार समझाउंदा है कि भाई कल्ला तन उत्ते कोई सूहा वेस धारण कीतियां, कोई बाहर का शिंगार कीतियां सुहागण नहीं बन जाती, बल्कि सुहागण बनन दे लई उस अकाल पुरख का जिहड़ा संदेश सानू गुरु दे शब्द विच्चों मिलदा है उहनू कमाउणा पैंदा है। नहीं तो जिहड़ा सूहा रंग है, महाराज ने ना ये जिहड़ी समुची वैसे ये जिहड़ी वार है ना, इहदे विच गल ही सूहे रंग की कीती है। बाबे ने कहा, सूहा रंग विकार है कंत ना पाया जाए, इस लहिंदे बिलम ना हो वही रंड बैठी दूजै पाए। आख्या ये जिहड़े सूहे रंग ने जिहड़ा बाहर का शिंगार है इहनू लहिंदियां देरी नहीं लगती। तो जिवें उगड़ गया जैसे खोटा ढबूआ, जिहड़ा खोटा सिक्का हुंदा उगड़ ही आउंदा, उगड़ आउंदा उहदा पता लग जांदा। तो गुरु कृपा करे इनियां बेनतियां प्रवान भुला चुका दी खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा
1: वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब भाई गुरसरज सिंह जी उन्हां दा हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने अज्ज दे मुख वाक की कथा विचार साढ़े ने सांझी कीती है। सतगुरु इन्हां नूं चढ़दियां कला बख्शन। सो हर रोज सवेरे शाम सेवा कर रहे हैं आप भी हाथ छुए भरके लाहे प्राप्त करो जी। सो कल तो संथिया की क्लास शुरू होनी है गुरबाणी की 7 बजे तो लैके 8 बजे तक शाम नूं। और किसी प्राणी ने संथिया लैनी है तो वह अपना नाम देने की कृपा कर लो ज क्लास में तुम हाजिर कर ली। अमर संचार जड़े ने 13 सितंबर को ऐतवार 9:30 बजे सवेरे होंगे। अमृत छकन लिये नाम देने की कृपालता करो जी। हुण भाई साहब भाई अंग्रेज सिंह जी जो कि साढ़े पास पिछले तकरीबन 2 हफ्ते तो सेवा कर रहे हैं और इन्हों का अज का शाम का इस फेरी का यह आखिरी दीवान है। सो बड़े प्यार नाल जो सेवा इन्होंने निभाई है दास अपने वालों समूह संगत वालों तो समूह प्रबंधक सेवादारा वालों भाई साहब के जत्थे का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। गुरु कृपा करे इन्हों चढ़दियाँ कला बख्शन। समा फिर जदों कितें बने मैं बेनती करांगा कि जदों कितें समा बने फिर इस तरह हाजरी भर के संगतां ते गुरु दीआं असीसां प्राप्त करनियां जी। सो गुरु कृपा करे इन्हों चढ़दी कला बख्शन होर महाराज कृपा करने दर घर की सेवा करदा उदम बल बख्शन करन। आपां वी अरदास करिया करिए प्रचारक वास्ते कि सतगुरु इन्हों चढ़दी कला बख्शन क्योंकि देशों विदेशों के साढ़े पास आ के सानू कीर्तन राही गुरु चरणा नाल जोड़ते हैं। तो मैं कई बार भी बेनती करदा कि प्रचारक श्रेणी नूं थोड़ा जिहा आपां प्रमोट करन दा यतन करिए मतलब इन्हां नूं हलारा देईए क्योंकि अज समा ऐसा बन गया कि जिन्ना असीं गाउण वालियां दे मगर आ ना खिमा करना बहुत प्रमोट किया जा रहा उन्हां नूं। और ते जिहड़े रागी प्रचारक श्रेणी आ इन्हां वल साडी बहुती तवज्जो नहीं हुंदी। आपां कोशिश करिए जिथों सानूं अध्यात्मक जीवन गुरु की बख्शिश तो गुरु की रहमत प्राप्त होनी आ उस श्रेणी नाल भी जुड़न दा यतन करो। आप जी नूं बेनती है सो आओ इन्हां दा धन्नवाद सर्व करिए इन्हां पासों कीर्तन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: गुरु जी की फतेह।
1: परम सगा जो सत सिंह जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। भाई साहब भाई परमिंदर सिंह जी ते उन्होंने जथे का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने लाही बाण के मरोह की सरम कराए ने। सतगुरु जथे चढ़दिया गला बख्शन। हुण भाई गुरप्रीत सिंह जी बदनी कलां वाला ढाड़ी जथा ढाड़ी बारा ते आसरम कराउणगे। उस तों बाद बीबियां दा सत्संग है, गुरु के लंगरां दी सेवा हो रही है। शकन दी कृपालता करनी जी। सो कल तो गुरद्वारा साहब विखे शाम नूं 7 to 8 तक गुरबाणी संथिया की क्लास आरंभ हो रही है। सो संथिया लई अपने नाम देने की कृपालता करो जी। अमृत संचार जिहड़े ने उह 13 तरीक नूं ऐतवार 9:30 बजे सवेरे होणगे। सो अमृत संगत लई अपने नाम देने की कृपालता करनी जी। सो आओ सरवण करिए हुण ढाड़ी बारह इतिहास। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।